भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पूज्य गुरुदेव की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।

0: की जय हो।
1: स्वामी बारहवन जी भगवान की जय हो। बड़ी गुरु श्री देव नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी वसन जी गुरुदेव की
2: जय।
1: Meaning is, my love is connected or directed to lotus feet of Gurudev. Nothing else makes me more happy than that.

0: आने की अलकपुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

पर प्रभु जी साक्षी सुदयात्मा। दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख। गुरु दीप हो पर नाम सायर

0: ओहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति। Hey, where the air is going? Air is going from this side. True. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
1: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवपुरी महादेव की
1: जय,
0: सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गुड इवनिंग।

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय।
1: जय
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरुष जी सद्गुरुदेव भगवान की जय।
1: जय
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरुष जी गुरुदेव की जय।
1: जय
0: सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ।
1: पोजद्राव कॉस्मिक मुया
0: सैल्यूटेशंस टू श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा।
1: अ पोजद्राव नशी सिद्धपीठ परंपरा।
0: माय दंडवत प्रणाम्स टू आवर बिलव्ड गुरुदेव हिज होलीनेस विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरुष जी।
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámímu Maheshvaranandžímu.
0: Good evening to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: A dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo se díváte na Swamiji TV.
0: There's a beautiful lecture which I heard from Gurudev.
1: Je jedna krásná přednáška, kterou jsem slyšel od Gurudeva.
0: How to tame our mind.
1: Jak zkrotit mysl.
0: Our mind is chanchal.
1: Naše mysl je čančal.
0: Chanchal means very restless.
1: A to znamená neklidná.
0: And that's no

अतंग नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नह

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

0: सेवा की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। ओम शांति शांति। द अटैचमेंट,
1: připoutanost.
0: Attachment to worldly.

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।